0: उतरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार।
1: जो तुद पावे साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार।
0: भरिया हाथ पैर तन देहे, पानी तो तय उतरस खेहे।
1: मूत पलीती कपड़ होए, देसा भून लईए ओ तोए।
0: भरिया मत पापा के संग, ओ तो पहना वे के रंग।
1: पुन्ने पापी आखन नाहे, कर कर करना लिख ले जाओ।
0: आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ।

0: मान मान्य नमो रोग रोगिन वास्तु शनाने
1: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे इष्टे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सदानं सर्वं परणासी नूपे रूपे समस्तल निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता अदो उर्धर तंग गंग ओग हरता
0: परम परम परमेशं प्रोष पालं सदा सर्वदा सदाता दयालं।

0: चक्कर बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन।
1: लोग चौदह की बेखै जग जापी जे जाप।
0: आद देवनाद मूरत था प्यो सबे जय था।
1: कारण रूप नित मूर्त पूर्ण पुरख अपार।
0: सर्व विश्व च्यो स्वयंभव कर्ण पंचन हार।
1: कालीन कला संजोगत काल पुरख देश।
0: धन सो परम रहत पूते अलख पेश।
1: रंग रागन रंग जाक जात पात न नाम।
0: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम।
1: आप रूप अमी कान देख पुरख अवधूत।
0: गंजन सर्व पंजन आदर रूप असूत।
1: आंगहीन भंग नात्म एक पुरख अपार।
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को

0: सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पौण
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र राज के सर्वत्र साज
0: के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु
1: के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पीखी के सर्वत्र पीखी
1: के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख के सर्वत्र भोख
0: के सर्वत्र तराण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र दिश के सर्वत्र पेश
1: के सर्वत्र मानिए सदैव अंग प्रदानिय के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
0: के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कलि में के पर्वं सहि में के आकल अलामे के साहेब कलामे
0: के वसन लो वजू तमामल रुजू में सो सलाम सलिखत मदाम
1: गरीबल शिकस्त गरीब परस्त बुलंदल मकाने जमीन अल जमाने
0: तमाम रुजू अल निदान हरि फल जी मर जाए के यकीन
1: अनेक तरंग है अपेद है अपंग है अजीज अल निवाज है गलीमल खराज है
0: निरप स्वरूप है तर मुक्त भूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुदा है
1: सदैव अंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम सदैव कामन वास रूप है गाद अनूप है
1: ओंकार रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
0: त्रिवर्ग त्रिवादी गंजी अगाधी सुभंग सर्वभागी सर्वानुरागी
1: त्रिभुक्त स्वरूप है अचिज है अछूत है के नरकंठ पर नाश है पृथ्वी पर वास है
0: त्रिभुक्त प्रभा है सदैव अंग सदा भोग स्वरूप

0: सार
1: सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंग्याता सर्वंग्याता
0: सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंगप्राणं सर्वंगत्राणं
1: सर्वंगकर्मं सर्वंगधर्मं सर्वंगयुक्ता सर्वंगमुक्ता
0: रिसावलशंतवै प्रसाद
1: नमो नरकनाश्य सदैवं प्रकाश्य नंगं स्वरूपे पंगं बभूते
0: परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध बभूते
1: नंगिय नामितर पंगितर कामिर पंगी

0: पर है कल कारण है सर्व बारण है।
1: प्रगति तरण जाके करण मन मान्य है जग जान्य है।
0: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है।
1: परमात्रम संबर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है।
0: ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करना कर है।
1: जपा जप धपा धप कृता कृता अमृता अमृत है।
0: अमृता अमृत है करना कृत है कृता।

0: एको अंकार वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवीं कबे बाच बेनती चौपाई हमरी करो हादर रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा
1: सब चंदन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा
0: हरे जो सब तुम काबो आफाद मोहि बचाबो
1: सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सब करतारा
0: मोर अच्छा निज कर द करिए सब रण कुवास घरी
1: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
0: सुबह शाड़ कोई अवर न त्याऊ जो अवर चाऊ तुम ते पाऊ
1: सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारे
0: आबाद है मज बरिय मरण काल का त्रास निवरिय
1: जो सदा हमारे पच्छा श्रिया सो जो करे हो रचा
0: राख लियो मु राख नहारे साहिब संत सहाय प्यारे
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिव जू अवतरा
1: काल पाए कर्म सन प्रकाशा

0: भगवान चाहो प्या प्रभागम सुनिया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया
1: हर गाओ मंगल नत सखी सोग दुख ना व्यापाय
0: गुरु चरण लागे दिन सपागे अपना फिर जावे
1: अनंत वाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो
0: कह नानक प्रभाव मिलिया कर्ण कारण जोगो
1: श्री राम मेरिया जग माए कह कह तुद कर्म कमाया
0: ये कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
1: तेरा रचन रचिया स्वर मन नाम वसाया
0: प्रसादी हर मन बसिया पूरब लिखिया पाया
1: नानक शरीर प्रवान हुआ जन सतगुरु सो चित लाया
0: ए नेत्रों मेरे हो हर तुम मैं जोत करी हर बिन अवर न देखो कोई
1: हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहालिया
0: एहो विश्व

मुसलमाना सिर्फ सरयद पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाई सलाम दर्शन रूप अपार तीर्थ नावर च पूजागर वास बैकार जोगी सुन ध्यावण जते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतो को उपजा देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा।

प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट चार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन भरमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सरोते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक कतेक अंत न पावै कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट परद्रव को हरै कई कोट पर दुख न करै कई कोट माया सुरमाए कई कोट परदेस भरमाए जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जानै करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पात्र बिरख निपजाए कई कोट पौन पाणी बैसंतर कई कोट देस भू मंडल कई कोट शतशी अर सूर निकत्र कई कोट देव दानंदर सिर सत्र सल समगरी अपने सुतार है नानक जिस तिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सात कई कोट वेद प्राण सिमरता सास्त कई कोट की रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट की चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वम थीवे कई कोट जस किन्न प्रचास कई कोट भूत प्रे सुकर मिर गाच सब ते नेरै सबू ते दूर नानका पल पतरिया भरपूर कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी कई कोट जन्म जीव मरै कई कोट बजोनी फरै कई कोट बैठ ती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट की यतनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ के हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतन लवलागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभ प्यास दिन के मिले प्रभ नास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पसरो पासार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बपात प्राप्त होए ब्रह्मा समात तक अंत न जानै कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास नो बतातम प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार होए को नेत्रे

ऐसी मार पावे। सुन अंधा कैसी मार्ग पावे, कर गहले को ओढ़ निभावे, कहा बुझार तुझे डोरा, मिस गई है तो समझी को, कहा मिशन पद गावे को, जतन करे तो भी सुल्फानी, कै पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो गुहा उस गवन।